बल्ले हरे सदा सदा बल्ले हरे सचिया सदा सदा बल्ले हरे तुदिया गे अरे दास हमारी वारी तुदिया गे अरे दास हमारी वारी जियो पेंड सब तेरा जियो पेंड सब तेरा सचिया।

करणी चढ़ी कला बक्षणी सेवा चाय पावनी अंग संसायो न। सरदार अपिंदर पाल सिंह सिकंदराबाद लंगरा ले बेअंत माया आदर कर दे रोगता चढ़ी कला बख्शनी बेअंत संगता वालों आप जी दे हजूरी बेच अमृत वेले तो ए समय तक सोने सोने रमाले अते श्रद्धा दे फुल भेट किते गए आप जी नो अंगीकार होना सेवकां दे लोक परलोक दे पढ़ दे काजने।

0: बागे कापड़ बुला बैण।
1: धन धन श्री गुरु नानक साहब सचे पातशाह जी, मलार राग दे विच साध संगत जी पावन पवित्र बचन उचारण करते हैं कूंजा दे प्रथाए, क्योंकि मैं पहला बेनती की है कि विद्वाना दे वख वख साध संगत जी जिमें आप अपनी बुद्ध है जेती जिनी कमारा सचे पातशाह किसी नूं समात देंदे ने उस प्रकार दे नालों कथन कर देंदा। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहे तेती। सो कहिंदे जदों कूंजा धरती दे उत्ते उतर के आईयां अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे हुक्म दे अनुसार उन्होंने महाराज नूं आके बेनती कीती, महाराज बड़ी कृपा कीती, आप जी ने दर्शन दिते ने, हुक्म करो महाराज सानू क्यों याद किया, किवें याद किया। ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे कूंजा नूं, क्योंकि कूंजा चिट्टे रंग दियां हुंदियां, महाराज कहिंदे बागे कापड़, महाराज कहिंदे हे कूंजो तुहाडे सारिआं दे बस्तर जिहड़े हन उह चिट्टे हन। बागे कापड़ चिट्टे कपड़े ने तुसीं पाए होए, बोलै बैण ते अपनी रसना नाल बड़े मिठे बोल बोल दिया है। लम्मा नक ते तुहाडा जिहड़ा नक है ना, जिहड़ी तुहाडी चुंझ है, लम्मा नक वह लम्मी है। हाँ जी,
0: लम्मा नक काले तेरे नैण,
1: तुहाडा लम्मा नक है और काले नेत्र हन, कालियां अखां हन।
0: कबहू साहिब देखिया भैण,
1: महाराज कूंजा नूं कहिंदे भैणे जदों तुसी उडारी मारदियां हो ते सतवें आसमान नूं छू जांदियां हो। ये कहावत है ना साध संगत जी, भी सतवें आसमान। महाराज कहिंदे कबहू साहिब देखिया भैण, तुसी अपनी उडारी दौरान कदे ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं उस साहिब नूं वेखणा कीता? ओ अकाल पुरख साहिब वाहिगुरु जिन्हें सानू सारिआं नूं सिरजणा कीता, जिन्हें सानू सिरजिआ और सिरज के सवारिआ और सवार करके आप साढ़े सारिआं दे अंदर सुभाए मानवी है, विराजमान भी है, व्यापक है, सब ही के विखै कश पाहण में परमेश्वर नाही। कलगीधर पिता जी महाराज लिखते ने श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे विच, महाराज कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु जी सारिआं दे विच व्यापक ने, रमे होए ने। कहिंदे पत्थरां दे विच थोड़ा, धन श्री गुरु नानक साहब सचे पातशाह आप जी नेता प्रति आरती दे विच महाराज जी दे बचन सरवण करदे, महाराज कहिंदे सब मैं जोत, जोत है सोए तिसकै चानण, सब मैं चानण होए। साध संगत जी आपां जिन्ने भी शरीर हां महाराज की हजूरी विच बैठ के सतगुरु जी का जस सरवण करन वाले, जां अपने घरां विच बह करके जिहड़े जस सरवण कर रहे ने, कुल कैनात संसार दे विच एदां दा कोई भी जीव नहीं जिहदे विच उहदी जोत नहीं, सब दे विच ही है। चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। चीटी कहिंदे साध संगत जी कीड़ी नूं, ते कुंचर कहिंदे ने हाथी नूं। कहिंदे कीड़ी दे विच वी अकाल पुरख वाहिगुरु जी व्यापक हन, रमे होए हन। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕੂੰਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਬਹੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

तव प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंश जते जे उदार अनभिज रूप दुरंत सब

भूत बन चारि चित छाना सब दूता धारी पौन के हारि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तिनो जानी पबखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सोचरैया कह पखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कह आदस फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरय को गंगे ऋषि कहत जग आके भचय सो चकोर सम मानिय। सूरज सिवैया ताहे कौल की बंडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि

या नाम कंस को बधैया जा मधुत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती सज बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है। न्योली करम जल हो

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भव करियई करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र प्रसन्न के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विसन कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित अश्विनी कुमार कित अंश अवतार कित काल बस भय है। पीर यो पिकम्बर कित गण न परत एत भूम हित हो के फिर भूम ही मिलय है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दो बची कपट फेस पोस दी अनेक दानी वावत है। शीश को कह भयो मल जो बिगाड़त अनेक दंड सोतन डंडोत अस टांग अति तीस को।

शीश पट जाके कान में खजूरा दस मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सो कुसाओ आग को चरिया फल फूल को बचैया सदा बन को भ्रमिया और दूसरो न भूकसाओ कहा भयो बेड़ जो खसत शीश वृक्षण सो माटी को बचैया बोल पूछ लीजे जो कुसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत चोर सदा घन घोर घन करियो करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाऊ भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जोग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांग कहूँ जो किया बरागी बन कब हूँ सन्यास वेश बन के दिखा वही कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टा

ताप कैसा है तेजो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेकता नघायल सहत है जाप के किए तेजो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उच्चरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की बरत कर पताल के बास के उपजंग न तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जो की भयो

राज रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानवो एक ही के सेव सब ही को गुरु देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्याय।

जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग खोड उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होय ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कच मच केते उनको करत भज केते अच वच हो सब बच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच बच को करेंगे भज केते को प्रत।

हंसने हंसनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वितरे सभूते भविखे भवान यचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतंग फेखं न सत्रं न वितरं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छया तद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं।

नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई गलव जोक साथ तदुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई गलव एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देसन भ्रमंत कई ऊर्ध

कई जबर जो कल्पं ब्रजंत ने तब्ता सपायत नांत कई करत कोट विदया विचार ने तब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत।

पद सर्व जलेर धलंधन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूता छेद छ्यंगन काल पाल दयाल सुंग जेठट्यंग मेरा काश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देवा देव वरंग सब की नी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न बात न मात पितं जय रच्यं छत्री छत्र छितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वाख न दाख न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज गयो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत जोत भुजंग किये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप।

नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर था दिग बांध गणंग भव भूत भवे खवान तुवांग जय अंडज से तजे रजंग रज भूमा का सब तार जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो।

चोदंगन गादक तंगन खेद वेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुकंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि रंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जा छब जंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय

देख से गेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिगे सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान।

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मात है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है।

सनक आसन केस नंदन पावही नासेब जस किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सकरा मुख चार सर्व सबत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेज नाद मुरद्या ताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे विराज राज राज प्रवीन जच गंत्रप देवदानो न भ्रम क्षत्रिय न माहे वैश्व लंके बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील ब्री कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मत उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जागरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद पतार के दर्जा पिए जह जोत शेष नाम से हंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पढ़त पढ़त थके महागब गर्द गाढ़ अनंत हार हार कहियो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेव कतेव देवदानो मूढ़ मानो जश न जाने देवदानो मूढ़ मानो जश न जाने जेव भूत भव भान भूपथ आदनाथ अनाथ अगन बाजले

सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व भुक्ता सर्व जोगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार, दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड, भूम काज लेथले मह जपत जाप मंड, श्रेष्ठ चार विचार जेते जानी सब चार, आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार, अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र, जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार, कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास अनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब चक्रत भे मुख चार, आद अंत न मध जाको भूत भव भवान, सत दुआ पर तृतीया कल जुग छत्र काल प्रधान, ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार, नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके गंधर्व नाच पशर पार, सोत सोत थके पास।

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विदतैं दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है।

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून कते दाम नीत मंगन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो से मासुर मर्दन भूमा का सलोर दधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ कते रक्ता सुर

खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद कते ब्रिडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दोष निवारण दोख हरे जय जय हो सी मैं खास सुर मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे।

राघव पंके भुजा परंके शुद्ध गति जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद नाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड।

तुरंत दुख दोग रहत जह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई

निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बात दास।

उर्धंग बिरहा सिद्धंग सरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग रागान छिज तेजान भिजताग जल धन वही बबंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दी नान दोख दहता उतार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुक

डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोक रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री पद मा पत पाए। आद अनंत अगात तवेक सो भूत भवेक भवान भवे अंत विहीन नाथ मावादाग दुख छिद्र छ है। लोकन के करता हरता जल मैथल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मा पत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह बीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम बरी सुध सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते अर शोकंते जल जोकंते वो भात बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहाँ कहे तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सोदान देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब सरण्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद गते बन भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सग जस भय जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान भेद नृपान सब बजहारे भेद न पाय सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाथ अगाध वेखद वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे देश विरयो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुहकारे दीन दयाला काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बंडैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव घोर कर देजे गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कि तेग बंध अरब के अरब आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मारे कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमे पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मानसो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को बनत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शेष न्यावे ते बते थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन्हे पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देव

शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की बासी है। जो गहूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्रीहन नर है। विश्व को भरण है गया पदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई न बार बार बार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल गावे हाँ बसी हल भी जावे पूर्व बिना पार पावे असत्य अनाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नादत व अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजिया मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाज कैसे छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के कूल के। हंसनी से सिहारो में ही रसी हुसैन आबाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंधु रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सुर सोरासी सुरंगाबाद निक सोर ही झूल के। जम्बासी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती से फूल के। फटक सी गलाज कमाऊ गढ़ कांसीपुर सिसोसी सुरंगाबाद निक सोहियत है। हिमा से हिमल हर हार सी हलबा ने हंस कैसे हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जचारी मौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र दे।

0: महाराज ने कहा ना कि दिन चढ़दियां तक भाई तुसी ना चौकिट दे इत्थे ही जिहड़ा है पैरा लाउणा ते बैठ करके बाणी दा जाप करना कीर्तन आदिक करना।
1: दास तुरंगन मह गमनियो एक
0: हुण एक सिंह जिहड़ा ना प्यारियो जिथे महाराज जी दे घोड़ियां दा अस्तबल जिहड़ा उस पासे गया ते उत्थे प्यारियो कुमैद रंग दा जिहड़ा घोड़ा जिहड़ा महाराज जी दा विशेष सवारी दा ओ नजर नहीं आया।
1: दाम खुले अगवार
0: पिछाड़ ते की देखदे के ओहदे अगवार ते पिछाड़ दे जिहड़े रस्से जिहड़े ओ खुले होए हन।

से जन जुग में सुखवासी से मुकात पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

श्री वाहिगुरु जी महाराज जी। गुरु गरीब निवाज अंतर जामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे हजूर अमृतमय शब्द बाणी कीर्तन चौंकी सोदर रहराज साहिब जी दी अरदास अखरवाद घाट भूल चूक माफ करना पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विच प्रवान करनी आईया समूह संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी कार्ज रास करने यात्रा सफली करनी सिख पढ़

पूरन गुरु अवतार जगमग ज्योत विराज रही। श्री अपचल नगरी अपार सत खंड के।

0: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी।

0: प्यारे चुमको पड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
1: प्यारे चुमको पड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
0: प्यारे चुमको पड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
1: प्यारे चुमको पड़े बानिया चार चरखड़ी ते मान दा जवानिया
0: सिरो रंबी नाल खो

वारी वारी पंजासी सानू कर परवा लिया, वारी वारी पंजासी सानू कर परवा लिया, ऐसा पंथ साजना सतगुरु मन विच ठान लिया, ऐसा पंथ साजना सतगुरु मन

आओ तको ये गोल दरबार होके तैयार पर तैयार नाल लगे मना मुई फौज किस तरह गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज उन्होंने फड़न वास्ते तुरे पई उन्होंने लैणा नू ये छंद ढाडी सिंह नाल।

जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे बिना।

खदरी क्रम लंघाए पार उल्लू चरखा चक्की चक थलवरो ले बहुत नंद लाटू मदानिया लगा पंखी पौंदिया ले नसा सुए चढ़ पुआइए जंत नानक पौंदिया गणत नांत बंदन बंद पुआए सोए वैक नचे सब गोए नाच नाच से चले से रोए।

ओडि सद्गुरु विट्ठो वारे आज तुम लेख समसमाल्या जिन कर विदेश ज्ञान अंजन दिया ने नेत्र जगत ने हालिया खशम छोड़ दूजे लगे दुबे सेवन जा रहा सदगुरु है बोझ था लै कि नहीं।

पौड़ी तुरे पलाने पौन वे खरंगी हरम सवार कोठे मंडप माणिया ला बैठे कर बसार चीत करन मन भाम दह बुजन नाई हारिया कर फरमाइश खाया वे कमैल तुमरन मुसारिया दरियाई जो बनहारिया दरियाई जो बनहार।